प्यारे बच्चों, हमने स्कूल मदरसे में अलिफ बे ते पढ़ा है। आइए आज हम इस्लामियात की अलिफ बे ते पढ़ते हैं।

0: टीचर टीचर, ये सलावात क्या है?
1: बेटा, सलावात का मतलब है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। चलिए दुरूद पढ़ते हैं।